नया नेपाल को नया आवाज आवाज विहीन को आवाज जन आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ज़।

एक नंबर को पास लाई दुई नंबर बसी का तीन नंबर मागा तेरा मनछेवानी के लाई तीनों हमरो बेला तीन नंबर मागा तेरा।

बसंत, बरखा, हरेक ऋतु, चाहे सुख हो या दुख के बादल, बस तोरे साथ और हाथों में तोर हाथ रहो। कसम से इधर से गगन के आप तोर संगे जीना, तोर संगे मरना, तोर संगे लड़ना थे जिंदगी के डगर।

विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला के जन पक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन विकास का लागू जनपक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।